कर कहा, मौला आपका सहारा ना हो, आपका वसीला ना हो, हम कामयाब नहीं हो सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। ज़ियारत आशुरा के पाबंद थे अल्लामा अमीनी, तब जाकर ये गिफ्ट लोगों के हवाले होता है अल-ग़दीर के उनवान से। दुरुलसमतायन ये किताब को ढूंढ रहे थे आप, किताब कहीं नहीं मिल रही थी, अल्लामा अमीनी ने मौलाए कायनात से कहा, मौला अगर आपकी मदद ना हो तो ये किताब मुझे कभी नहीं मिलेगी। और मौलाए कायनात ने आपके वसीले को कबूल किया, एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो आपकी किताब भी मिल गई। इबादतों के ज़रिए से, ज़ियारतों के ज़रिए से उलमाए कराम ने पैगाम दिया है। अल्लामा अमीनी का जुमला आप भी एहसास करेंगे जुमले को, जब भी मैं किताब लिखने बैठता था एक ऐसी ताकत का एहसास करता था जो ताकत दुनियावी ताकत नहीं है, एक स्पिरिचुअल पावर। वो स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आता है इंसान को? जब मानवियत इंसान की बुलंदी पर पहुँच जाती है, कमाल पहुँच जाती है, इंसान एहसास करता है ताकत मेरे अंदर है, वो ताकत मुझे सपोर्ट कर रही है कि लिख, अब तुझे किताब लिखना है, तुझे आर्टिकल लिखना है। वो ताकत इबादतों से, ज़ियारतों से, अहले बैत अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से इंसान को नसीब होती है। एक सलाम यहीं पर कर दूँ, हसन नसरुल्लाह की खिदमत में भी बड़ी मेहनत की इस बंदे ने, शहादत नसीब हुई इसी महीने में, उनकी शहादत की तारीख भी है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रुतबा अता किया आपको, शहीद बन गए आप लोग, आज आपको याद करते हैं, आपका छोटा सा रोज़ा बन गया, लोग आपकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। जब भी वो तकरीर के लिए खड़े होते हैं तो तकरीर करने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम ज़रूर करते हैं, अस्सलामु अलैका या सैयदी व मौलाई या अबा अब्दिल्लाह। कितना खूबसूरत यह सलाम है, इंसान को तकरीर भी करना हो, स्पीच भी करना हो, इंसान के काम भी करना हो, तबलीग के काम, एक ताकत लें, एक एनर्जी लें, अहले बैत अलैहिस्सलाम को ज़रिया बनाए और तवस्सुल इख्तियार करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्ग हस्तियों के सदक़े में उनकी मदद कर सके। तकरीर के इब्तिदा में सलाम, और जब तकरीर ख़त्म होने पर आती तो आप करबला का रुख करके कहते, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, इन अहसनल हदीस व अबलगल मौइदा किताबुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة। خطبہ دوم ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں। लास्ट वीक यूएन में जनरल असम्बली में दुनिया के लीडर्स जमा थे, रिप्रेजेंटेटिव्स जमा थे, उन्होंने स्पीचेस की, उन्होंने मैसेज दिया और आज की दुनिया की हालत पर गुफ्तगू की। लेकिन जहां पर नतीजा हासिल होना था, जहां गुफ्तगू होती है, बात होती है, मैसेज रखा जाता है, तो रिज़ल्ट चाहिए होता है। लेकिन आज जो यूएनओ या जनरल असम्बली में जब लोग जमा हुए थे, वहाँ से कोई इंसान को उम्मीद अब बाकी नहीं रही है। कोई नतीजा निकलेगा, कोई फाइनल डिसीशंस लिया जाएगा और बड़े इसका लीडर्स बैठकर कोई नतीजा हासिल करेंगे, कोई रिज़ल्ट मिलेगा फलाह का, बहबूदी का, पीस का, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, ह्यूमैनिटी का मैसेज, कहीं पर कोई मैसेज हमें नज़र नहीं आया। बोलने वाले कई नज़र आए, लेकिन जब बात प्रैक्टिस की आती है, प्रैक्टिकल डिसीशंस की आती है, वो चीज़ नज़र नहीं आती। बुज़ुर्ग शायर ने कई सालों पहले कहा था, ये यूएनओ में बैठते तो लोग हैं लेकिन उसका असर नज़र नहीं आता। ऐसे ही है, प्लेटों की सदा आती है लेकिन खाना नहीं आता। कभी पार लोगों को दस्तरखान पर बिठा दिया जाए, प्लेट तकसीम कर दिए जाएँ, तो प्लेट ले या लिए लोग हाथ में इंतज़ार करते हैं, खाना तो आए तक कि प्लेट से हम उठाकर खा सकें। प्लेटों की सदा आती है पर खाना नहीं आता। स्पीचेस तो करने वाले बहुत मिले लेकिन कहीं रिजल्ट नहीं, उम्मीद नहीं, होप नहीं नज़र आया।
کہیں ہوپ نظر نہیں آیا. کچھ لوگوں نے باتیں اچھی کیں, کچھ باتوں نے پیغام اچھا دیا, لیکن ایک ڈیسیشن لینے میں کامیابی حاصل نہیں کی.

0: आपके बाबा सुपर हीरो हैं, चैंपियन हैं, आइडियल हैं, हमेशा उन पर फख्र करना।
1: जैनब का नाम उसके बाबा ने ही इंतखाब किया था। वो हमेशा कहते थे, जैनब मेरी जीनत है, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम जैनब रखा।
2: मैं मुकम्मल कलाम पाक की हाफिजा को दावत देना चाहता हूँ, मोहतरमा जैनब शेरी का इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाए मोहतरमा, तशरीफ लाए मोहतरमा, बिस्मिल्लाह, आइए आइए। सलामुन अलैकुम, तशरीफ लाए, सलामुन अलैकुम, तशरीफ लाए। माशाल्लाह, अरे मैं कुर्बान जाऊँ, आपका तारुफ कुछ इस तरह से कराया गया था कि मैं समझ रहा था कि जैनब शेरी एक बुजुर्ग और सिन रसीदा खातून होंगी। आप कैसी हैं मोहतरमा?
3: ठीक हूँ।
2: जरा दुआ और सलाम कर लीजिए।
3: मोहतरम नाजरीन और हाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ। मैं जैनब शेरी जाफरजादे मुकम्मल कुरान की हाफिजा हूँ।
2: माशाल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ।
4: यस सलाम।
2: जैनब बेटी आप कितने साल की हैं?
3: 8.5 साल।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह, 8.5 साल और मुकम्मल कलाम पाक हिफ्ज कर लिया। मोहतरम बुजुर्गवार, मैं आप सब से इल्तिमास कर रहा हूँ, जरा सख्त सवाल पूछें।
5: मुश्किल सवाल पूछें?
2: जी हाँ पूछिए।
5: मैं शुरू करूँ?
2: जी।
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: जहाँ तक मुझे इल्म है कि फरिश्ते तो आसमानों में हैं, फिर ये जमीन पर कैसे आई?
2: कह रहे हैं फरिश्ते आसमानों में रहते हैं, ये जमीन पर कैसे?
1: मैं आयत करीमा के बारे में पूछूं?
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

0: कितना वक्त हुआ, कितने वक्त से, कब से आपने बाबा को नहीं देखा?
1: 1.5 साल की थी।
0: यानी अपने बाबा की शक्ल तुम्हारे जहन में नहीं है ना? है?
1: ना, नहीं।
0: उनकी तस्वीर देखी है?
1: जी हाँ, सिर्फ वो वीडियोस जिसमें वो मेरे लिए शेर पढ़ रहे हैं और मैं हाथ पांव हिला रही हूँ।
0: कहाँ गए थे जंग के लिए, कहाँ मफ़कूदुल असर हुए?
1: सीरिया।
2: माजरत, मुझे नहीं मालूम था, वरना बात ही ना करता। ज़ैनब बेटी, ज़ैनब, अल्लाह इम्तिहान लेता है। तुम अगरचे कमसिन हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में बड़ी हो, इस सब्र की बदौलत। क्या तुम कबूल करोगी कि शाम में हज़रत ज़ैनब की ज़ियारत के लिए आओ और मेरी मेहमान बनो?
1: जी।
2: मेरी तरफ से हज़रत ज़ैनब की ज़ियारत तोहफ़ा है ज़ैनब बेटी के लिए।
0: शुक्रिया उस्ताद रिज़वान, शुक्रिया।

0: जनाब बुजरी
1: जी,
0: शुहदा की शरीक हयात और उनकी माओ का मर्तबा भी शुहदा से कम नहीं है। ये बच्ची 1.5 साल की थी, अपनी माँ के साथ थी, बाप के साथ थी। ये माँ इस मुद्दत में पल पल जीती और मरती रही। मेरी ख्वाहिश है कि आप इनकी वालदा से दरख्वास्त करें कि वे स्टेज पर तशरीफ लाएं।
1: जी,
0: इस बच्ची की वालदा का इस्तकबाल करें।

0: सलाम और एहतराम हाजरीन और नाजरीन की खिदमत में। उम्मीद करती हूँ आप सभी की इबादत तो बंदगी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल है इंशाअल्लाह।
1: कितना खुश होती होंगी जब ज़ैनब को देखती होंगी।
0: जी, मुझे तो वाकई खुशी होती है और बहुत सुकून मिलता है जब इसे देखती हूँ। इसने अपने बाबा को नहीं देखा, लेकिन इसकी बहुत सी आदतें

0: और खूबियाँ अपने बाबा जैसी ही हैं। दरहकीकत जैनब के हिफ्ज़ का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ था। जैनब बहुत छोटी थी जब उसके बाबा चले गए, लेकिन जैनब का नाम उसके बाबा ने ही इंतखाब किया था। वो हमेशा कहते थे, जैनब मेरी जीनत है, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम जैनब रखा। उनके जाने के बाद मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत सख्त दिन मैंने गुजारे,
1: जी
0: लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और सोचा कि इसके बाबा की तनहा यही आरजू थी कि उनकी बेटी उनके लिए जीनत बने। मैंने भी कोशिश की कि जैनब इस कुरानी रास्ते पर कदम रखकर अपने बाबा के लिए जीनत बन सके और उनके मिशन को आगे बढ़ा सके।
1: जिंदाबाद। इंशाल्लाह जैनब तरक्की और जिंदगी के तमाम मराहिल को कामयाबी के साथ तय।
0: सलामत रहिए
2: जनाब अबू ज़री, क्या अब भी इस आए करीमा पर ईमान न लाएं?
3: वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله।
2: इसके बाबा कितने खुश होंगे ये मंजर देखकर।
0: जैनब की टीचर हमेशा कहती थी, यानी एक मुद्दत तक जैनब के साथ काम करने के बाद वो मुझसे कहने लगी कि हिफ्ज के दौरान मुझे साफ नज़र आता है कि इस बच्ची के वालिद की दुआएं इसके शामिल हाल हैं। वो हमेशा कहती थी कि कोई गायबाना तौर पर जैनब की मदद करता है, अल्लाह की मर्जी और उसका करम था। इसके बाबा की दुआएं थीं कि ये हाफिज कुरान बन गई। उम्मीद है कि अपने बाबा के मकसद को आगे बढ़ा सके इंशाल्लाह।
4: जैनब बेटी, आपके बाबा एक हीरो हैं, गौर करना, आपके बाबा सुपर हीरो हैं, चैंपियन हैं, आइडियल हैं। हमेशा उन पर फख्र करना, हमेशा उन पर फख्र कर सकती हो। माफ़ करना यहाँ ये बातें हो गईं, हम तुम्हें रंजीदा नहीं करना चाहते थे, हम चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो।
1: इलाहिया।

0: चीज़ लेकिन मानवीय है। मैं अतबाया बाइसिया से बात करूँगा और इस बच्ची और इसकी वालदा को ज़ियारत अतबात की दावत दी जाएगी।
1: शुक्रिया।
0: इंशाअल्लाह।
1: बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ। एक सवाल मैं भी पूछूं, सही बताना। हाँ, और दिल से तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, कहाँ पहुंचना चाहती हो? अगर कहीं पहुंचना आरजू है या क्या हासिल करना चाहती हो, अपनी आरजू बयान करो।

काश के मैं पहले ही बीवी से पूछ लेती कि मैं यहीं ठहर जाऊं और आपके फिराक में अश्क बहाऊं, या मदीने की तरफ लौट जाऊं और जहां कहीं भी मुमकिन हो आपके सफर की हकीकत को बयान करती रहूं, आपके पास ही ठहर जाऊं और अपनी माँ से जुदाई को बर्दाश्त करूं, या फिर अपनी माँ के पास चली जाऊं और आपसे दूरी का गम सहूं, यही कुम में आपके कब्र मुबारक की मुजावर बन जाऊं और आपके जायरीन की खिदमत करूं, या आपकी सफीर बनकर मदीना चली जाऊं। ऐ काश मैं पहले ही बीवी से पूछ लेती।

0: हुक्म है। अली इब्ने मूसा के फर्जंद और जौजा को दारुल हुकूमत नहीं बुलाया गया।
1: मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, मुझे क्या मालूम कि पैगाम में क्या लिखा है।
0: अगर ये इतना ही आम और फौरी था तो तुम इतनी देर से क्यों लेकर आए मेरे पास?
1: मेरे जिम्मे एक और काम भी था, इसहाक इब्ने मूसा पर नजर रखनी थी मुझे। वो मक्का से यहां पहुंचा है ताकि सफर में साथ जा सके।
0: इसहाक इब्ने मूसा,

0: अमान दे मुझे, अमान दे मुझे साकिब ने मुसा। मैं मामूर हूँ, आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ हूँ।
1: मदीना का रास्ता मुझे बहुत तवील लग रहा था, जैसे कभी खत्म ही ना होगा। मुझे हुकूमती कासिद की खबर पहुंचाने से पहले मदीना पहुंचना था और बीबी को मुत्तला करना था कि एक गैर मुतवक्के सफर दरपेश है। मुझे इसलिए भी जल्दी पहुंचना था कि वो जान लें कि इस सफर में हम खुद उनकी हमराही करेंगे, इससे पहले कि हुकूमती कासिद उन तक कोई बुरी खबर पहुंचा दे।
2: आया जनाब। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। बीबी कहाँ है?
2: आपके भाई अली इब्ने मूसा के घर में है, वहाँ दर्स दे रही हैं। सब खैरियत तो है?
1: कोई कासिद आया था दारुल हुकूमत से?
2: नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। कोई बुरी खबर है क्या?
1: तुम परेशान ना हो अबू असमा।
3: भाइयों,
2: अल्लाह खैर करे।
1: कासिम
3: भाई, हमजा, इब्राहिम, देखो जनाबे इसाक आए हैं।

0: हद की तरफ से दी गई है।
1: बाबा जान, बीबी का दर्द इख्तिताम पजीर हो गया है।
2: बीबी का दर्द इख्तिताम पजीर हो गया है।
0: सब भाइयों और उनके बेटों को खबर कर दें कि फौरन सफर की तैयारी शुरू करें, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ये हकीकत है कि मैं आपकी खातिर यहां आया हूं। हमें मदीना से हिजरत करनी है। हुकूमती सिपाही किसी भी वक्त हुक्मनामा लेकर पहुंच जाएंगे। कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं। हुकूमत आपको मजीद मदीने में सुकूनत अख्तियार करने की इजाजत नहीं दे सकती।

0: ये हमारे भाई मौला रिजा का पैगाम है आपके लिए। हम सब भाई सफर में आपके साथ होंगे।
1: हाजियों को पहले ही मक्का से मर्फ की जानिब रवाना कर दिया है मैंने,
0: ताकि मैं आपके हमरा सफर करूं।
2: क्या कोई है इस घर में?
3: सरबरा कौन है इस घर का?
4: तुम्हारे बड़ों ने सिखाया नहीं कि बगैर इजाजत किसी के घर दाखिल नहीं होते?
3: इस हुकूमत के हुक्मनामे को किसके हवाले करूं मैं? इस हुक्मनामे पर फौरी अमल दरामद भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज का दिन ढल ना रहा होता तो मैं कल का इंतजार नहीं करता। वलीअहद की हमशीरा को कल दारुल हुकूमत का सफर इख्तियार करना है, कोई सवाल नहीं करेगा। फौरन तैयारी करो जाने की।

0: आप लोग अंदर जाइए, सलामत रहो।
1: शुक्रिया। पानी पानी,
2: ठहर जाओ, पानी अभी नहीं पिलाना इसे। जख्म से कपड़ा हटाओ, देखूं जरा।
0: बर्दाश्त करो मेरे भाई।
2: एक साफ कपड़ा लाकर दो मुझे।
3: उम्मे अस्मा,
2: इससे इसके जख्म को साफ करो। वो चराग पकड़ाओ जरा मुझे।
0: जख्म काफी गहरा है,
2: बहुत हसास जगह पर लगा है, काफी वक्त लगेगा ठीक होने में। मैं अभी आती हूँ। मरहम बना लिया तुमने?
3: एक बार देख लीजिए।
2: ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसमें से कुछ और शामिल करो। बहुत ही मामूली से नमक का भी इजाफा करो इसमें, और अच्छी तरह मिलाना।
3: अब क्या करेंगे?
2: तुम परेशान मत हो,
3: बहुत ज्यादा खून बह चुका है उनका।
2: जानती हूँ, लेकिन ठीक हो जाएगा।
3: मैं कोई मदद कर सकती हूँ? दवा बनाते हुए कोई जिक्र वगैरह नहीं पड़ती क्या तुम?
4: मैं अपनी वालिदा से तबाबत सीख रही हूँ, मुझे जादू टोना नहीं आता।
3: अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम मुतमइन तो हो ना कि जख्म के लिए यही मरहम बेहतर रहेगा?
4: बेहतर तो ये है कि किसी को जख्म लगाने पर मजबूर न किया जाए।
3: तो फिर तुम क्यों अपनी जुबान से वार कर रही हो?

0: सीखने का कौन सा तरीका है?
1: इनको उबाल कर इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है।
0: सबसे पहले ये सीखो कि मरीज के साथ तुम्हें अच्छा सलूक करना है और सख्त लहजे में बात नहीं करनी।
2: मैंने ऐसा क्या कह दिया बाबा जान जो आप नाराज हो रहे हैं? दरअसल मेरे कहने का मतलब ये था कि अब इन लड़ाई झगड़ों को खत्म हो जाना चाहिए। मामून अब्बासी ने हमारे मौला को वली अहदी का मनसब दे दिया है और बीबी को भी दारुल हुकूमत आने की दावत दी है। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि इस दुश्मनी के लिबास और उस पर लगे धब्बों को कराबतदारी और अपनायत के हौसमंद धो दिया जाए, ताकि हम भी सुकून का सांस लें और हमारे मर्दों के सरों पर से जंग और बदमनी का साया दूर हो पाए? वरना इसी तरह आहुफरियाद और लड़ाई झगड़े की फिजा बनी रहेगी और तलवारें तेज होती रहेंगी।
1: तुम्हारी जबान भी तलवार से कम तेज नहीं है, पकड़ो इसे।
2: अब जबकि वो लोग सुलह चाहते हैं और अपनी तलवारों को नयाम में रख चुके हैं और हम इस सुलह की शीरीनी को कड़वाहट में बदल देना चाहते हैं, हम मौला अली इब्ने मूसा को दारुल हुकूमत बुलाए जाने पर सुए जन करते रहे तो बीबी को बुलाए जाने पर क्या कहेंगे? क्या ये खुशी की बात नहीं है?
0: तुम्हें उन लोगों की नीयत के बारे में क्या मालूम? उन लोगों का जाहिर कुछ है और बातिन कुछ और है बेटी।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके लिए उन लोगों का बातिन बिल्कुल जाहिर है।
0: ला हौला वला कुव्वता।
2: क्या इस घर में कभी सब एक साथ खुश नहीं रह सकते वालिदा?
1: इस घर में हमेशा से दुख और परेशानियां नहीं थी। कभी ये घर भी खुशियों का गहवारा हुआ करता था बेटी। हम नन्हे मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए कतार बनाए खड़े थे। क्या ही अच्छे दिन थे।
2: यहां से वालिदा ने पुरानी यादों को ताजा किया और अच्छे दिनों के बारे में बताने लगी। इस बात का बारह जिक्र किया कि हम मूसा इब्ने जाफर के घर के अफराद की तरह रहे हैं। उस घर में हमें कभी कनीजी और गुलामी का एहसास नहीं हुआ। बीबी की विलादत का जिक्र भी किया और बताया कि उस घर में खुशी का समा था। हमारे मौला अली इब्ने मूसा के लबों पर मुस्कुराहट थी और ये भी कि मूसा इब्ने जाफर ने उस घर के बड़े होने की हैसियत से नौ मौलूद के कानों में अजान दी। मेरी वालिदा ने सख्ती के दिनों, गमजदा यादों और मूसा इब्ने जाफर के हुकूमती बुलावे और कैदोबंद की अजियतों से सरफ नजर किया, ताकि ये बता सकें कि मूसा इब्ने जाफर की अदम मौजूदगी में अली इब्ने मूसा ने अपनी अजीज हमशीरा को कभी बाप से दूरी का एहसास नहीं होने दिया। बहन और भाई के रिश्ते में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ज्यादा उजागर था और ये आले मोहम्मद की शागिर्दा मदीना की खवातीन के लिए बेहतरीन मौलिमा साबित हुई। अच्छी यादों का तस्करा करते हुए बात मुझ तक आ पहुंची और बताया कि बीबी ने अपनी घर की खादमा की बेटी यानी मुझे अपने भाई हमजा के साथ अज़दवाजी रिश्ते के लिए मुंतखब किया।
1: मुझे बहुत खुशी है कि इस सफर में तुम बीबी के हमराह हो। मेरी बीबी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना।
2: अस्सलामुअलैकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। सफर के लिए तैयार हैं? ये वालिदा ने भेजा है, सफर में काम आएगा आपके।
2: बहुत शुक्रिया। अंदर आइए।
3: अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश आमदी।
3: तबीयत कैसी है आपकी?
1: शुक्र है अल्लाह का।
2: ये लीजिए।
1: बहुत शुक्रिया बेटा।
3: वालिदा ने कहा है कि अगर आप चाहें तो सफर पर चल सकती हैं हमारे साथ।
1: नहीं बेटा, ये हकीकत है कि मुझे बहुत याद आएगी तुम दोनों की, मगर मेरे अंदर सफर करने की हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ खातून और मोहम्मद इब्ने अली की खिदमत में रहूँ अगर तो ज्यादा बेहतर होगा मुझे लगता है। बीबी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना मेरी प्यारी बेटी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मदीना में दोबारा मिल बैठेंगे, पूरा यकीन है मुझे।
2: अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे, लेकिन उस वक्त मैं एक नातजुर्बाकार शागिर्दा नहीं रहूंगी जिसकी तबाबत में आसानी से खामी ढूंढी जा सके, बल्कि ऐसी तबीबा होंगी जिसने दारुल हुकूमत के माहिर तबीबों से तबाबत सीखी होगी और मेरी अपनी एक पहचान होगी
1: इंशाल्लाह। मेरे जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले।
3: आपके जिगर का टुकड़ा है और मेरी आंखों का नूर है।
1: अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे।
2: सफर एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब जो भी हो लेकिन खुदा हाफिजी की नागवारी से शुरू होता है और सफर से एक दिन पहले की शब खुदा हाफिजी में गुजरी।

एक भूपी की खुदा हाफिजी अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अली से, एक मौलमा की खुदा हाफिजी अपनी शाकिर्द खवातीन से, और अपने जद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार से खुदा हाफिजी। बनू हाशिम में एक खूबी ये है कि जब तक वो जिंदा रहते हैं अपनी खवातीन को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते।

0: किस रास्ते से जाएंगे?
1: सहरा के रास्ते से जाएंगे।
0: सहरा के रास्ते से?
1: बिल्कुल।
0: वो तो खतरनाक रास्ता है।
1: खतरनाक है लेकिन मुख्तसर है।
2: सफर शुरू करें। रास्ता बहुत तूला नहीं है और दिन छोटे हैं। हमें फौरन रवाना होना है।
1: तूलानी सफर उन जखीम किताबों की मानंद है जिन्हें पूरा पढ़ना मुश्किल है। बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफर खुशगवार भी हो सकता है और दुश्वार भी। ये सफर इस्तराब का सामना करेगा, आसानी या दुश्वारी को मुसाफिरों के सामने पेश करेगा और तरह तरह की फिक्रों को जन्म देगा, लेकिन नहीं मालूम कब क्या वाकया पेश आएगा। मुख्तसर लेकिन नाशनास रास्ते सफर के मामले को और पेचीदा करते हैं, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचने का हुक्म मिला था।
3: काफले को यहाँ रोकना पड़ेगा। रेत का तूफान आ रहा है।
4: रेत का तूफान आ रहा है।
3: जल्दी करो, जल्दी रुक जाओ। जल्दी आते हैं, सब हम भी जाएंगे।

0: ऊंट के दूध की लस्सी सहरा में गर्मी के एहसास को कम करती है। आप लोग क्या हज से वापस आ रहे हैं? सहरा का रास्ता क्यों इख्तियार किया? ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है।
1: ए बुजुर्गवार,
0: आप तो इनके साथ थे, ये रास्ता खतरनाक है क्या आपको मालूम नहीं था?
2: क्या कह सकते हैं भाई, इस रास्ते के इंतखाब पे मजबूर थे।
0: क्या कहा, मजबूर थे? आप लोगों के साथ तो खवातीन और बच्चे भी हैं।
3: ए बादिया नशीन, क्या तुम हमेशा लस्सी के जायके को अपने गैर मरबूत सवालों से इसी तरह बदजायका करते हो?
4: हो सकता है कि हमें देर हो रही हो।
5: देर से पहुंचना बेहतर है बजाय इसके कि इस बयाबान में अपनी जानों को खतरे में डाला जाए।
2: रास्ते का तायुन करना हमारा काम है, आपका नहीं जनाब इसाक।
5: ये रास्ता थोड़ा तूलानी है लेकिन पुरअमन है और उस रास्ते से बेहतर है जिसकी तजवीज हमें ये शख्स दे रहा है।
6: तूलानी होने की वजह से क्या वो शख्स इस रास्ते से जाने पर राजी हो जाएगा?
5: काफिला सालार हम हैं, इस सफर में वो हमारे साथ हैं। हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे जहाँ से हमारे भाई को ले जाया गया।
7: हम गैर मधु मेहमानों का क्या करेंगे? लगता है इन मामूरों के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो हमारे काफिले के साथ साथ हैं।
5: वो मामून अब्बासी के जासूस हैं। जब तक मर्व में सब कुछ ठीक है हमें इनसे कोई खतरा नहीं। हमारी सफर के हवाले से परेशानियों को देखकर बीबी ने फरमाया कि हमें परेशान होने के बजाय सफर की इन जहमतों से इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि जिस रास्ते से भी गुजरें वहाँ बयान हदीस और वाज़ो नसीहत की मजालिस का इनेकाद किया जाए। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि दारुल हुकूमत से आए मामूरों की मौजूदगी में ये मजालिस कैसे मुनक्किद की जाए, और दूसरी तरफ बीबी के इत्मीनान की वजह से मुतमईन भी था। कई रोज़ो शब सफर

0: कितना अच्छा हुआ कि आप आई। आज कितना मुबारक दिन है। मैं जानती थी और सबसे कहती थी कि ख्वाबो ख्याल इस कदर वाज़े और यकीनी नहीं होते। कितने सालों से मैं ये हसीन ख्वाब देख रही थी। काश के वालिदा जिंदा होती। एक वही थी जिनको यकीन था कि उनकी बेटी के मुकद्दस बीबी की ज़ियारत की आरज़ू ज़रूर पूरी होगी। वो कहती थी, इसमें कोई फ़र्क नहीं कि तुम उन्हें जागते हुए देखो या ख्वाब में, चाहे बुढ़ापे में देखो या फिर जवानी में। मुकद्दस बीबी का नाम चाहे मरियम हो या आसिया हो या फिर फातिमा, जब भी तुम उनकी ज़ियारत करो मेरा सलाम पहुँचा देना। मैं नहीं जानती थी कि आपका क्या नाम है, नहीं मालूम था कि आपकी ज़ियारत होगी या नहीं, मगर मुतमईन थी मैं, ये दिन ज़रूर आएगा, मुझे यकीन था इस बात का। आप पर मेरा सलाम, मेरी माँ का सलाम जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस बच्ची का सलाम जिसकी विलादत आज ही हुई है। इसका नाम फातिमा रखा है, इसे कबूल फरमाए।
1: वो बहुत खुश थी उसकी बेटी की पैदाइश के मौके पर वो मुकद्दस बीबी के जिनकी ज़ियारत के लिए वो कब से बेचैन थी, आज वही उसके रूबरू खड़ी है और उसकी बेटी के कानों में अजान और अकामत कह रही है। और बीबी भी उस बच्ची का नाम फातिमा रखने पर खुश थी। दुख्तर रसूल अल्लाह हजरत फातिमा से मोहब्बत बीबी की मुस्कुराहट से जाहिर थी। देखते ही देखते मजलिस बयाने हदीस में तब्दील हो गई और फिर बीबी ने रसूल अल्लाह की चंद अहदीस का जिक्र फरमाया जिनमें औलाद अली से मोहब्बत और उसके अजीम अजर को बयान किया गया था। हम सब बहुत खुश थे सिवाय एक शख्स के।
2: बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें खाने की, मेरे आगे से सारा गोश्त चुनकर खाए जा रहे हो।
3: खामोश हो जाओ, खाना भी सुकून से नहीं खा सकते तुम लोग। मैं सफर में गैर मामूली तब्दीली को महसूस कर रहा था। ये तय नहीं पाया था कि हम किसी नदी में गिरे पत्तों की तरह हैं कि पानी जिस तरफ भी चाहे बहाकर ले जाए। रास्ते में जगह जगह अली इब्ने मूसा के हामी ग्रोहों की शक्ल में जमा हो जाते थे और जो चाहते कहते और सुनते थे।
4: इमाम मदीने में मौजूद नहीं है, ये मुख्तसर सा जुमला सुनते ही हमारे सफर की थकावट में कई गुना इजाफा हो गया था। जब तक घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ, ना उम्मीद नहीं हुए हम। सवालनामे को उनके हवाले किया और ये तय पाया कि जब इमाम मदीना वापस आ जाएंगे तब हम इसका जवाब लेने के लिए दोबारा आए। दूसरी बार नाउमीदी तो अपनी जगह थी, लेकिन हमें एक बात ने हैरान करके रख दिया कि इमाम अभी वापस नहीं लौटे थे, मगर हमारे सवालों के जवाब हमें मिल चुके थे। हमें उनके वापस ना लौटने की फिक्र भी थी और ये जानने का इश्तियाक भी कि आखिर किसने इन सवालात के जवाब दिए हैं और क्या ये जवाब सही होने पर इत्मीनान किया जाना चाहिए भी या फिर नहीं। लेकिन ये इस्तराब मदीना के मरकजी दरवाजे तक ही हमारे साथ रहा। जब हम पहुंचे तो इमाम को दूर से आते हुए देखा। अस्सलामु अलैका यबना रसूलल्लाह, हमारी जाने आप पर कुर्बान। हम मदीने से नाकाम नहीं लौटे थे, इमाम की ज़ियारत की और मुख्तसर वक्त में जितना हो सका उनकी गुफ्तगू से फैज़ियाब हुए। हम खुश

0: बस इतना ही लड़ सकते हो? ये काफिला तो तुम लोगों की हिफाजत में जा रहा है, कोई मामूली चरवाहा भी तुम लोगों को आसानी से लूट सकता है।
1: देखा आपने इब्ने मूसा, हमारा हर जवान 10 जंगजुओं से अकेला लड़ सकता है।
2: अल्लाह इनकी शुजात और महारत में और इजाफा फरमाए।
1: इन जवानों की तलवारें अल्लाह के दुश्मनों के खून की प्यासी हैं।
3: ये सब्र मसलहत का दौर कब खत्म होगा जनाब इसहाक? आखिर मैदान जंग में कब उतरेंगे?
2: हम तो इस वक्त भी मैदान जंग में ही मौजूद हैं ऐ जवान।
3: तलवारें नियाम में रखकर
2: इताअत करके अपने इमाम की।
3: मसलहत सुलह और मकाम के हुसूल में है, जंग कहाँ है वजाहत कीजिए जनाब।
1: खामोश, तुम्हें मेहमानों की इज्जत और औलाद अली की हुरमत का ख्याल नहीं है?
3: वो औलाद अली जिन्होंने जुल्फिकार को नियाम में छुपा रखा है, क्या उन्हें अपनी हुरमत का ख्याल है?
2: लगता है कि तुम जंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते ऐ जवान। तलवार चलाना, नेजा उठाना और तीर को कमान से फेंकना तुम जैसे जंगजू के लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बेहतर है कि पहले अपने नफ्से अम्मारा से जंग करें।
3: मैं आपकी बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रहा जनाब।
2: काश इन लोगों को ये समझाया जा

0: आप सलामत रहे बाबा।
1: आ गई तुम बेटी, बगदाद नजदीक है। बीबी को जाकर बता दो कि उनके वालिद का मजार ज्यादा दूर नहीं है।
0: हिजाज में सूरज की तपिश बहुत ज्यादा होती है, गोया आग बरस रही हो, लेकिन इराक के बयाबानों में बारिश और बादलों से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। इराक में हमारा आबाई घर रहने के लिए बेहतरीन जगह थी। मैं जानती थी ज़ियारत का इश्तियाक बीबी के सफ़र की थकावट के एहसास को कम कर देगा।
2: बीबी, हम बगदाद के नज़दीक पहुंच गए हैं। वालिद-ए-गिरामी के मज़ार की ज़ियारत के लिए जाएंगे पहले।

0: वो दिल जो विलायत के हामी नहीं, वही दिल है गुमराह और बेसबात। और जरा ये मिस्रे समात कीजिएगा कि कैसे रसूल खुदा की वसीयत को भुला दिया गया। रसूल खुदा की वसीयत को भी भुला डाला जैसे हो एक आम बात। तवज्जो चाहूंगा, ये रस्में बशर है के बाद वफात वसी ही चलाता है सब मामलात। कुछ लोग अहले बैत से दुश्मनी को दिल में छुपाए रखते हैं। जो दिल में छुपाए रहे दुश्मनी, अगरचे ये लगती है कुछ सख्त बात, वो सब हक पे होते अगर मुत्तफिक, तो उम्मत बिखरती ना यूं शश जिहाद।
1: तुम फौरन वहां जाओ और जाकर देखो कि वो खवातीन में क्या बातें कर रही हैं, कौन सी हदीस बयान कर रही हैं, किस सवाल का जवाब दे रही हैं और हुकूमत के खिलाफ क्या बातें कर रही हैं। जो कुछ वहां सुनना लफ्ज ब लफ्ज मुझे आकर बताना, बगैर किसी कमी बेशी के, बहुत एहतियात से। चलो जाओ अब।
2: मैं बहुत खुश हूं कि अपनी जिंदगी में इस वहदत का और आले रसूल की वली अहदी का ये मुबारक दिन देखना नसीब हुआ है मुझे। अब खून खराबे और इख्तलाफात का दौर खत्म हुआ, कैदोबंद का खौफ और हिरास नहीं रहा। अब्बास हो या फिर अली, चाहे चचा हो या चचा जाद भाई, दोनों ही रसूल अल्लाह के खूनी रिश्ते हैं। तमाम इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं।
3: बीबी पर उस खातून की साजिश आमेज गुफ्तगु नागवार गुजरी। उन्होंने अपने जद रसूल अल्लाह से हदीस नकल फरमाई और कहा कि उस औरत की तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को दूसरों के बराबर करार ना दिया जाए। और हजरत फातिमा जहरा की एक हदीस का जिक्र किया जो नस्ल दर नस्ल औलाद अली से रिवायत हुई थी। क्या तुमने उसे फरामोश कर दिया है जो रसूल अल्लाह ने गदीर खुम में फरमाया था, जिस जिसका मैं मौला हूँ ये अली भी उसका मौला है। और ये भी फरमाया कि अली को मुझसे वही नस्बत है जो हारून को मूसा से थी।
4: तुमने हमारे दिलों को तस्कीन बख्शी, अल्लाह तुम्हारे वालिद के दर्जात बुलंद करे।
0: वालिद कहा आपने? उस पर अल्लाह अजाब नाज़िल करे।
4: तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अपने बाप को बद्दुआ क्यों दे रहे हो ऐ शायर?
0: क्योंकि उसके करतूत से वाकिफ हूं मैं शायद हूं कि वो जालिम शख्स फर्जंद रसूल को, जिनके मजार की आप ज़ियारत करने के लिए आए हैं, दर्दनाक अज़ियतें देता रहा। आखिरकार फर्जंद रसूल शहीद हो गए। उस वक्त मैं बहुत कम सिन था। मैंने खुदा की बेहतरीन और बदतरीन मखलूक को एक साथ देखा है।
4: थोड़ा ख्याल करो है भाई, हो सकता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे अफराद मौजूद हो जो तुम्हारी बातें हजम ना कर सकें।
1: अल्लाह आपकी ज़ियारत कबूल करे। आप चाहें तो मजीद रुक सकते हैं यहाँ। बगदाद में मुझे अपने एक देरीना दोस्त से मुलाकात करने के लिए जाना है। इस तरह आप लोगों को यहाँ रुकने के लिए ज्यादा वक्त मिल सकेगा। तुम्हारा क्या नाम है ऐ शायर गुमनाम?
0: कशा जिम।
1: मुनाफिकाना शायरी में काफी महारत हासिल है तुम्हें, तुम्हारा नाम याद रहेगा मुझे।
0: उनके बारे में काफी सुन रखा था।
4: एक जगह जमाना हूं।
0: यह भी सुना था कि उन्होंने कैद खाने में बहुत से दारोगों को हक की तरफ रागिब किया। और यह भी सुना कि वो हारून और रशीद की हुकूमत के खिलाफ कयाम करने का इरादा रखते थे।

मुझे उनकी शहादत की खबर के मदीना पहुंचने का बहुत अफसोस था, इसलिए कि मदीना को बगदाद से कभी कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी।

0: क्या तुम जानते हो कि जिस काफिले की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है वो जिन इलाकों से भी गुजरता हुआ आ रहा है वहाँ के लोग काबू से बाहर होते जा रहे हैं। क्या मामून अब्बासी को इस बात की खबर है कि तुम वली अहद की हमशीरा को किस रास्ते से लेकर जा रहे हो?
1: वो बेखबर नहीं।
0: आज तुमने देखा बगदाद में कुरैश के कब्रिस्तान में उस यहूदी जादे कशाजीम ने क्या किया? क्या ये भी बताया है तुमने मामून को? ये खतरनाक रास्ता जो मुहिब्बाने औलादे अली से भरा हुआ है किसका इंतखाब है? इस खबर को भी जितना जल्दी हो सके तफसीली तौर पर दारुल हुकूमत तक पहुंचाओ। खबरदार कर रहा हूं मैं।
2: यह पैगाम हमारे मौला अली इब्ने मूसा तक पहुंचा दीजिए। लिखने वालों के नाम इसमें तहरीर नहीं किए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला पेश आए तो उन अफराद की जानें महफूज रहें। मामून अब्बासी ने अपना हकीकी चेहरा आयां कर दिया है। कोई भी काफिला दारुल हुकूमत नहीं पहुंच रहा। बहुत से मोमिनीन जो अली इब्ने मूसा से मुलाकात का इरादा रखते थे वो दारुल हुकूमत मर्व नहीं पहुंच पाए। हुकूमत के शदीद रद्द अमल के नतीजे में बहुत से हाशमियों ने जामे शहादत नोश किया और बाकियों की कोई खैर खबर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
3: ये एक और हुकूमती पैगाम आया है।

0: ये सफर अब मूसा इब्ने जाफर के फर्जंदान से क्या चाहता है हमजा? आखिर क्यों इस खानदान के नसीब में अपने वतन से दूरी लिखी है? वालिद गरीबुल वतन होकर बगदाद में शहीद हो गए, उनके फर्जंद को मर्व में रहने पर मजबूर किया गया। और फिर हुकूमती पैगामों का यह सिलसिला। इस बार क्या नया होने जा रहा है हमारे साथ? आधी रात गुजर चुकी है, सर्दी भी मजीद बढ़ गई है।
1: मुझे तो इनकी खवातीन और बच्चों की फिक्र है, इनका मजीद यहाँ ठहरना बेहतर नहीं है।
0: मैं जाकर कहती हूँ।

0: बीबी जान, जानती हूँ कि अपने वालिद की कब्र से जुदा होना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सर्दी की वजह से ज्यादा नहीं ठहर सकते हम यहाँ।
1: बीबी, बेहतर होगा आप कुछ देर आराम कर लें।

पहाड़ों और वादियों की शदीद सर्दी के जिससे हमारा पहली बार वास्ता पड़ा था हमारे लिए वबाले जान बन गई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि हुकूमत के भेजे हुए मामूर अचानक गायब हो गए और मशकूक अफराद की आमदोरफ्त शुरू हो गई। ये अजीब व गरीब इज़्तिराब और वहशत की कैफियत हड्डियों तक पहुँचने वाली सर्दी से ज्यादा तकलीफ देती।

0: क्यों, क्या हुआ? मुस्तकबिल की तबीबा का ज़ौक़ो शौक क्यों मान पड़ गया? आगाज़े सफर वाली खुशी कहाँ गई बेटी?
1: ये सफर अजीब है बाबा, हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरा इश्तियाक उतना ही कम होता जा रहा है।
0: किस बात की परेशानी है तुम्हें? मैं साथ हूँ, तुम्हारा शौहर साथ है, और साथ में अरबी घोड़ों पर सवार बनू हाशिम के शमशीर जन है जिनका कोई मुकाबिल नहीं। घबराने की कोई बात नहीं बेटी।
1: मेरा दिल परेशान है, ये सफर बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैंने तसव्वुर किया था। पहले मुझे ये लगता था कि आप मामून अब्बासी को बिला वजह ही चालाक हुक्मरान और उस हुकूमती दावतनामे को एक साजिश समझ रहे हैं। मैं समझती थी कि आप इस सफर की अहमियत से ठीक तरह वाकिफ नहीं है। आप जानते हैं ना कि मुझे मर्व के कुतुबखानों और तिब्बो तबाबत के मराकज जाने का कितना शौक था, और दारुल हुकूमत में उस इमारत को भी देखने का शौक था जिसे हमारी सुकूनत के लिए मखसूस किया गया है। और यहाँ क्या है? रेत पत्थर और आलूदा हवा के अलावा और तो कुछ भी नहीं है।
0: अच्छा, तो रेत और पत्थरों ने तुम्हें मायूस कर दिया। परेशान मत हो, पहुंच जाएंगे।
1: मैं ऐसा नहीं कह रही। देखें, यहाँ कोई भी खुश नहीं है। लगता है जैसे खुशियाँ हमारे लिए हैं ही नहीं। बीबी भी इस सफर से परेशान है। ये हुकूमती मामूर अचानक गायब हो जाते हैं और कोई भी कहीं से भी जाहिर हो जाता है। हमजा और इसहाक जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये वो सफर बिल्कुल नहीं है जो मैं समझ रही थी बाबा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। ये कैसी दावत है जिसके लिए हमें इतनी जहमतें और असियतें उठानी पड़ रही।

अब अकल आई है तुम्हें? जब यह हकीकत तुम्हारे सामने वाजे हो ही गई है तो अब पहले से ज्यादा बीबी का ध्यान रखना। बीबी की हिफाजत अहम है। मैं नहीं चाहता कि पूरी जिंदगी की खिदमत गुजारी के बाद अपने मौला रजा की अमानतदारी में किसी कोताही पर शर्मिंदगी उठाऊं।

0: बाबा जान, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जान, बीबी कह रही है कि हम यहाँ कयाम करेंगे। वो चाहती है कि यहाँ की खवातीन के लिए मजलिस हदीस व नसीहत का इंतजाम किया जाए।
1: उनका हुक्म सर आंखों पर।
0: मैं बहुत परेशान हूँ। किसी की हिफाजत आसान काम नहीं, वो भी किसी ऐसी हस्ती की हिफाजत जो इस कदर अहम और महबूब हो, तो फिर इस इज़्तिराब और बेचैनी का होना फितरी अमल है। हमारा ये सफ़र तो अजीबो गरीब वाकयात से भरा हुआ है। सफ़र का तूलानी होना, दूरी और उदासी, कभी अपनों और कभी गैरों के साथ माशरत, ये सब जंगजू मर्दों के जिस्म रूह को भी थका देता है। मैं परेशान हूँ। मैं बीबी को ऐसी रंजीदा हालत में देखकर गमज़दा हूँ। एक अरसे से ज़मीन व आसमान मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सफ़र दुखों और तकलीफ़ों से भरा हुआ है।
2: कल की रात आपने कहाँ बसर की जनाब?
3: आपकी खातिर खुद को मैंने काफले से दूर रखना चाहा।
4: ये जो नामालूम लोग हमारे काफले के साथ साथ हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं?
3: नामालूम कौन है? मैंने तो किसी को भी नहीं देखा।
2: अच्छा,
5: खुश आमदीद। कुछ दिनों से मैं बहुत बेसब्री से आप लोगों की मुंतजर हूँ। मेरी दावत कबूल करके मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शे। हलवा बनाकर लाई हूँ मैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये बीबी की खिदमत में पेश कर दूँ।
3: मुंह मीठा कर लें जनाब इसहाक, बहुत खुलूस से बनाकर लाई है।
2: अल्लाह आपका खुलूस कबूल करे। हमजा
4: जी भाई,
2: इन खातून को बीबी के पास ले जाएं।
4: ठीक है।
5: आपके आने की खुशी में मैं ये हलवा बनाकर लाई हूँ। आप कबूल कर लेंगी तो इज्जत अफजाई होगी मेरी। थोड़ा सा चख लीजिए।
3: क्या तुम जानते हो कि क्या कर रहे हो नादान?
4: अस्मा, अस्मा, अस्मा!
0: क्या बात है हमजा, सब खैरियत तो है?
4: मैं नहीं जानता, लेकिन बेहतर है कि कोई उस हलवे को ना खाए।
2: क्या हुआ हमजा?
4: उस बूढ़ी औरत के बेटे को मामूर से सिक्के लेते देखा मैंने। मैं भी नहीं जानता कि क्या हुआ है। मुझे शक हुआ तो इन्हें आकर मना किया।
3: तुम्हें नहीं लगता कि इंसान को अपनी की गई गलतियों से सीखना चाहिए?
6: शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
2: मैं अब तुम्हारा मातहत नहीं हूं।
3: मामून अब्बासी की मकाराना चालों से मुझ जैसा तजर्बाकार और वफादार सिपाही भी महफूज नहीं था। मैंने उस शख्स के साथ अहदे वफा बांधा था जो दूसरों को क्या अपनों को भी माफ नहीं करता। एक मामूरियत के बाद दूसरी, और इसके बारे में मैं बस इतना जानता हूं कि यह अब्बासी हुकूमत के लिए मेरी जिंदगी की आखिरी मामूरियत होगी।
7: अगर कोई चाहता कि हमें किसी मुश्किल में डाले और उस पर इल्जाम भी ना आए तो वो क्या करता? वही जो मामून अब्बासी हमारे साथ कर रहा है।
2: मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के सिपाहियों में इतनी जुर्रत है कि वो वलीहद के खानदान के काफिले पर हमला कर सकें, और अगर उन्होंने

0: ये जगह खतरे से खाली नहीं है। जितना जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा।
1: दीदी बीमार हो गई है और मेरी किसी भी कोशिश से खातिर खा नतीजा हासिल नहीं हो रहा। शायद ये इसहाक इब्ने मूसा के तज़क्कुर की वजह से है। उन्होंने जब से कहा है कि वो खतरे को महसूस कर रहे हैं और हमें बीवी का पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा, तब से हर सदा पे मेरा दिल लरस उठता है।
2: हमजा लौट आया है।
3: दुनिया मेरी सोच और तवक्को से कहीं छोटी थी। पहले मैं सोचता था कि जमीन और आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन मैं अब्बासियों के अलावा किसी और के लिए तलवार नहीं चला सकता। मगर यहाँ हमराही ये सफ़र की खजूरों की मिठास अपना काम कर गई और मैंने अब अपने ही सबका साथियों के हाथों जख्मी बदन के साथ अपने हम काफिला की जानों की हिफाजत की खातिर तलवार उठाई है।
4: ये आपके साथ क्या हुआ है?
0: मुझे माफ कीजिएगा जनाब इसहाक, हक को पहचानने में देर हो गई, बहुत देर। आपकी और आपके लोगों की जानें महफूज नहीं है। वो किसी भी सूरत इस काफिले को सही सलामत मर्व नहीं पहुंचने देंगे।

मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। कासिम, जैद, इब्राहिम, आप लोग मेरे साथ चलें। हमजा, आप बीवी और दीगर खवातीन को लेकर किसी पुर अमन इलाके की तरफ चले जाएं। याकूब, हमजा के साथ जाएं आप, जल्दी करें।

0: हमारा क्या होगा?
1: बेहतर होगा कि आप काफले से कुछ फासले पर रहें। आपकी हिफाजत के लिए हमजा साथ जाएगा आपके।
2: हमारे भाई और इमाम रिजा आपके मुंतजिर हैं, उन्हें हमारा सलाम कहिएगा।
1: मैं आकबत खैर का मुंतजर था, मुझे जर्रा बराबर भी मौत का खौफ नहीं था। हम बनू हाशिम को दुनिया में शहादत से बढ़कर कुछ अजीज नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी अधूरी रह जाए।

और लोग मेरे बारे में ये कहें कि इसहाक ने कहीं पर कोई कोताही की है। मेरे पास सबसे कीमती शय मेरी जान थी, जिसे मैं मैदान में ले आया हूँ।

0: 아리사키아키. 미안해.
1: 알레 मोहम्मद पर कितना सुलटाया है.
2: मैंने कहानियों में भी कभी इस तरह के रहस्यों के बारे में नहीं सुना था. उनमें हर कोई तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता जंगजू की तरह था. कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रहस्य हो ही ना. मुझे हर किसी पर शक हो रहा था, यहाँ तक कि उस बूढ़ी औरत पर भी जो इस दर्दनाक हमले से पहले हमारे लिए हलवा लेकर आई थी. मुझे ये भी डर था कि दुश्मन हमारी इन शहादतों के बाद भी अगर खामोश ना बैठा और उसने दोबारा किसी भी वक्त हम पर हमला कर दिया, नहीं मालूम कि हम मर्फ पहुँच भी पाएंगे या नहीं. लगता है बाकी का सारा सफ़र इस तराब और बेयकीनी की कैफियत में गुजर जाएगा. बीबी पूछ रही है कि कुम तक कितना फासला है.
3: मेरे ख्याल में
4: तकरीबन 10 फरसख.
2: मैंने शहर कुम का नाम पहले से सुन रखा था. मेरी वालिदा ने इमाम जाफर इब्ने मोहम्मद से रिवायत किया था कि कुम अहले बैत का हरम है. बीबी कह रहे हैं कि कुम तक 10 फरसख का फासला है. जैसे ही मैंने बीबी को कुम का फासला बताया, उन्होंने फौरन काफले से अलग होकर कुम की तरफ जाने का हुक्म दिया. कुछ ही देर बाद एक छोटे से काफले के बायस मेरे दिल को कुछ सुकून मिला.
4: मेरा सलाम हो अहले बैत इस्मत व तहारत पर. बहुत शर्मिंदा है बीबी. अल्लाह गवाह है कि हमने कहीं भी सुस्ती से काम नहीं लिया. हम लोगों को जैसे ही आपके काफले की खबर मिली, हम उसी वक्त रवाना हो गए. हमें अपने गम में शरीक समझे. मर्फ तक पहुंचने में बहुत दिन लग जाएंगे. आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप कुछ दिन कुम में हमारी मेजबानी कबूल फरमाएं.
2: फिर से इत्मीनान और इस्तराब यकजा हो गए. इत्मीनान इसलिए कि कुम का नाम सुनते ही बीबी के रंजीदा और गमजदा चेहरे पर इत्मीनान

0: नजर आया और इस्तराब इसलिए कि मालूम नहीं कुंभ पहुंचने तक हमारे साथ क्या होगा।
1: कुंभ वालों, बीबी का काफिला पहुंच गया है, दुख्तर मूसा इब्ने जाफर का काफिला पहुंच गया है। खुशामदीद मूसा इब्ने जाफर की दुख्तर, खुशामदीद। आपने कुंभ वालों को यह शर्फ बख्शा, आप पर हमारा सलाम।
0: हम सब आपका खैर मकदम करते हैं। मर्व में हमारे मौला रिजा की खिदमत में पहुंचने तक काफी रास्ता बाकी है। आप सेहत याब होने तक यहीं कुम में कयाम फरमाइए और इस शहर वालों को अपनी खिदमत का मौका दीजिए।
2: मेरा सलाम कबूल कीजिए। हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं। कुम के तमाम मर्द और खवातीन आपसे ताजियत करना चाहते हैं और आपकी सलामती के लिए दुआ गो हैं।
0: इन दिनों कुंभ में ठहरने का इंतखाब बिल्कुल सही था। अपनी माँ की नसीहत और जनाब इसहाक शहीद की वसीयत के मुताबिक मैं खुद को बीबी के मुहाफिज के मुकाम पर देख रही थी। एक जगह ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती थी। बीबी हर हाल में, चाहे खलवत में हो या खवातीन से मुलाकात में मसरूफ हो, जिक्र इलाही को कभी फरामोश नहीं करती थी और मेरी इबादत इन दिनों बीबी की आयादत करने में थी। दवा बनाना और बीबी की सेहत याबी के लिए अपनी पूरी कोशिश करना।
3: अस्मा, बीबी, देखो क्या हुआ है।
4: बीबी, क्या हुआ है आपको? तबीबा, तबीबा को फौरन बुलाइए। थोड़ा पानी दो मुझे।
3: तबीबा, या अल्लाह, क्या हो गया इन्हें? जल्दी से देखिए इन्हें आके।
4: पुरसुकून हो जाए, मेहरबानी करके आप सब बाहर चली जाएं।
3: चलिए। या अल्लाह, अपना करम करना।
5: ये लो बेटी, जो तुमने कहा था वो सब ले आई हूँ। इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम?
4: काम कर रही हूँ, घबराई हुई नहीं हूँ मैं।
5: काम कर रही हो इस तरह से?
4: क्या हो गया और कैसे होता है काम? मैं यहाँ अपने घर से मीलों दूर, शोहर शहीद हो गया परदेश में, और कैसे काम करूँ कि आप राजी हो जाएं, बताएं मुझे।
5: अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी बेटी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि तबाबत सब्र और तहम्मुल का काम है। इस परेशानी और अफसरदगी में तुम दवा तो बना सकती हो बेटी, लेकिन शिफा नहीं दे सकती। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए।

0: क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो मौजजा करना चाहते थे, मदीना की बेहतरीन तबीबा के शिफा बख्श हाथ बनना चाहते थे जख्मों और तकलीफों को कम करो, फिर तुम इतने नातवा क्यों हो गए? आखिर इस बीमारी का इलाज मुश्किल क्यों है? बेवकत हाथों, काश तुम ना होते। तुम्हारे होते हुए मैं कुछ ना कर पाऊँ, ये ज्यादा हसीयतनाक है मेरे लिए।
1: अगर आपके हाथ थक गए हैं तो मैं मदद कर दूँ आपकी।

बीमारी भी रहस्यों से कम नहीं है। खामोशी से आगे बढ़ती है, फिर मुहासरा कर लेती है। जब ऐसा लगता है कि इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, तो सामने खड़ी नजर आती है। हम तबीबों से दवा और अल्लाह से शिफा तलब करते रहे, लेकिन बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही थी।

0: और उस दिन से अल्लाह की पनाह जब तबीब दवा और इलाज के बजाय नहीं जानते शायद या दुआ करें जैसे अल्फाज की तकरार करें।
1: मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, जितना इल्म तब मैंने सीखा है वो सब इस्तेमाल कर लिया है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं जानता कि उनकी बीमारी की असल वजह मुझ पर जाहिर क्यों नहीं हो रही।

0: बीमारी का कोई तोड़ नहीं हो रहा मूसा।
1: तो इसके इलाज के लिए मजीद कोशिश करेंगे हम।
0: हर इलाज आजमा चुके हैं।
2: बीबी के सिरहाने कुरान पढ़ने वाली का इंतजाम कीजिए। तबीब ने जवाब दे दिया है, किसी के बस की बात नहीं है।

0: काश के मैं पहले ही बीबी से पूछ लेती कि मैं यहीं ठहर जाऊं और आपके फिराक में अश्क बहाऊं, या मदीने की तरफ लौट जाऊं और जहां कहीं भी मुमकिन हो आपके सफर की हकीकत को बयान करती रहूं। आपके पास ही ठहर जाऊं और अपनी माँ से जुदाई को बर्दाश्त करूं, या फिर अपनी माँ के पास चली जाऊं और आपसे दूरी का गम सहूं, यही कुंभ में आपके कब्र मुबारक की मुजावर बन जाऊं और आपके जायरीन की खिदमत करूं, या आपकी सफीर बनकर मदीना चली जाऊं। ऐ काश मैं पहले ही बीबी से पूछ लेती।
1: ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इमाम अली इब्ने मूसा रिजा अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी साद अशरी को ज्यारतनामाए हजरत बीबी फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा देकर कुमुल मुकद्दिसा भेजा और उस जमाने से लेकर कयामत तक आने वाले जायरीन के लिए उस ज्यारतनामे को वसीलाए मारफते हजरत फातिमा मासूमा करार दिया।